0: I think this is really good.
1: This lassi shop has been standing for 64 years. A tribute to Lahori Stirs for the Punjab region's most beloved drink. Some of the locals here even refer to it as white beer.
2: What is lassi and what is it made of?
0: Yogurt,
3: milk,
0: sugar,
3: ice,
0: and that
3: together.
0: That okay.
3: Must okay.
2: Why is lassi so popular here?
0: Yeah.
3: ये लाहौर का कल्चर है कि नाश्ता जो मर्जी करे उससे पहले लस्सी पीनी है पार्टीशन से पहले इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन में पहले पीते आ रहे हैं
0: राइट
3: पंजाबी
0: राइट
3: इंडिया पाकिस्तान अंग्रेज दौर ब्रिटिश दौर
1: एंड द प्राइस फॉर गेटिंग दिस होस्टिंग जॉब वेल मेकिंग लस्सीज फॉर द क्रू सर्व्ड बाय योर्स ट्रू
2: चीयर्स